योषा गणेन वरदद्धि विमथ्यमाने घोषालयेषु दधिमन्थन तीव्र घोषा रोषात् कलिम् विदधते ककुभश्च कुम्भा शेषाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम् पद्मेश मित्र शतपत्र गताली वर्गा हर्तुम् श्रियम् कुवलयस्य निजाङ्गलक्ष्म्या भेरी निनादमिव बिभ्रति तीव्र